0: तो मालूम नहीं है
1: हमसे सुनो ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे
0: यही तो मालूम नहीं है
1: हमसे

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा